0: सबै रुल्छौ, देश दुख्दा सबै दुख्छौ, छाती भित्र देश बोक्छौ, हौ हामी नेपाली, हौ हामी नेपाली।
1: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा एघारमा वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो।
2: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 लागि कक्षा एघार अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
1: पढाइ हुने विषयहरू
3: अनिवार्य नेपाली,
1: अनिवार्य अंग्रेजी,
3: सामाजिक गणित,
1: ऐच्छिक लेखाशास्त्र,
3: ऐच्छिक वित्त शास्त्र,
1: ऐच्छिक अर्थशास्त्र,
3: कम्प्युटर विज्ञान,
1: भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू,
3: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि,
1: भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि,
3: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि,
1: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म।
3: दक्ष अनुभवी तथा विषयगत विशेषज्ञ शिक्षकद्वारा सहजीकरण गराइनेछ।
1: स्मार्ट क्लासरूम तथा डिजिटल लर्निङ सिस्टमको व्यवस्था,
3: विद्यार्थी मैत्री, शान्त तथा सुरक्षित शैक्षिक वातावरण,
1: नियमित युनिट टेस्ट, विकली टेस्ट तथा मोडेल इक्जाम सञ्चालन गरिनेछ।
3: कमजोर विद्यार्थीका लागि विशेष सुधारात्मक कक्षाको व्यवस्था,
1: उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई मासिक तथा वार्षिक पुरस्कारको व्यवस्था,
3: समय अनुसार प्र्याक्टिकल प्रेजेन्टेसन तथा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा विशेष जोड,
1: आधुनिक कम्प्युटर ल्याब तथा इन्टरनेट सुविधा सहितको अध्ययन व्यवस्था,
3: अनुभवी करियर काउन्सिलरद्वारा भविष्य निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शन,
1: नेतृत्व विकास, व्यक्तित्व विकास तथा सार्वजनिक बोल्ने कला सम्बन्धी तालिम,
3: अनुशासन, नैतिक शिक्षा तथा सकारात्मक सोचको विकासमा विशेष प्राथमिकता,
1: अतिरिक्त क्रियाकलापद्वारा विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन गराइने,
3: विज्ञान प्रविधि तथा व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित शैक्षिक भ्रमणको व्यवस्था,
1: सीसीटीभी निगरानी सहित सुरक्षित तथा व्यवस्थित विद्यालय वातावरण,
3: अभिभावक र विद्यालय बीच नियमित समन्वय तथा प्रगति प्रतिवेदनको व्यवस्था,
1: सीमित सिट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ,
3: हाई डिग्री अफ डिसिप्लिन एन्ड एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट भएको।
1: थप जानकारीका लागि 091-560-738, 091-561-446, 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77।
3: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली।
4: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सिक्ल।
5: अरे का करूरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू, मिलबो मिलबो नि करत का कैना हो का।
4: मिस्तरान बर्जन हुकन घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैल बाट, आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्रफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो न, कबु कहुँ र घुम जाए त थाहा पाए।
6: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26।
8: ए रोक रोक रोक,
9: के भयो, किन कराएको यस्तो?
8: दाई यस्तो पनि हुन्छ र, 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे,
10: डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड। यति मात्र होइन, लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
8: हो र। हो नि एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड।
11: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक #123# डायल गरी वा एनसेल एपमा गई लिनुहोस्। एनसेल नेपालकै लागि।
1: नवजीवन सहकारी संस्था के 32 वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना। नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड के 32 वार्षिक साधारण सभा तथा ऊ सभा से कई जिना संस्था के नया कार्य समिति के निर्वाचन समेत निम्न मिति समय ओ स्थान में हुईना हुईले कोर से संस्था के संपूर्ण शेष सदस्य महानुभाव हुक्र संस्था के शेष सदस्य परिचय पत्र वा नेपाल सरकार से प्रमाणित करल जारी कई गिल फोटो सहित के परिचय खुलना कागजात के साथ उपस्थित हुईकला हार्दिक अनुरोध करती। मिति 2083 जेठ 9 गते शनिवार समय बिहान के 8 बजे से संध्या 5 बजे सम स्थान ओम पैलेस धनगढ़ी कैलाली नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढ़ी कैलाली विस्तृत जानकारी के लक्ष्य संपर्क नंबर 091-520-283।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल
0: तू वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर हुई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477417।

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज था का कना हो बाबा फिर उस तो बातें गति लो ठाउं से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं है रे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा था
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कही था कभी पेंसिल हेरा कही था कभी झोले फटा कही था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला अनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का अनल झोला जस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: भर्ना खुल्यो
4: यस सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टिकापुर कैलालीमा सामान्य चिकित्सा SA कार्यक्रम अध्ययनको लागि भर्ना खुल्यो
3: फारम भर्ने मिति 2083 वैशाख 29 गते देखि जेठ 13 गते सम्म
4: अनलाइन फारम सम्बन्धमा पढ्न इच्छुक विद्यार्थीहरूले यस सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टिकापुरे कैलालीमा आएर सहयोग लिई फारम भर्न सक्नुहुनेछ अथवा www.cetevtexam.org.np मा उपलब्ध गराइएको ITMS अनलाइनमा भरी सबमिट गर्नुपर्नेछ
3: सामुदायिक क्याम्पस भएकोले यसै कार्यक्रममा ₹3,23,200 शुल्कमा मात्र अध्ययन गराइन्छ
4: आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन भएको व्यवस्थित प्रयोगशाला र विषय विशेषज्ञद्वारा कक्षा सञ्चालन गरिन्छ
3: आवेदन फारम शुल्क ₹1,000 लाग्नेछ
4: फारम भर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू
3: SEE, SLC वा प्राविधिक SLC को शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि नागरिकता वा जन्म दर्ता लक्षित वर्गमा फारम भर्नु परेमा आफ्नो वर्ग खुल्ने प्रमाण पत्र र स्पष्ट मुखाकृत देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो
4: नोट सामान्य चिकित्सा HA अध्ययन गर्नको लागि न्यूनतम 2 GPA हुनुपर्नेछ सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टिकापुर कैलाली सम्पर्क नम्बर 091-560-203 98-58-48-7079 98-48-67-76 र 98-45-45-39-97
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर
4: अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको दोस्रो तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ
3: ससानो कुरामा तनाव हुने
4: बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने
3: कुलटमा लाग्ने
4: छटपटी हुने
3: मुटु धेरै ढुकढुक हुने
4: जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही जेठ 9 गते 16 गते र 23 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 सम्पर्क राख्नुहोला
3: टिकापुर अस्पताल टिकापुर कैलाली
5: टिकापुर नगरपालिकाको ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा सञ्चालन बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
6: टिकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका वडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा भिडियो एक्सरे सेवा तपसिलको स्थान मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ
5: एक नगर कार्य समितिको भवन वडा नम्बर 1 जेठ 8 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
6: नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी वडा नम्बर 6 जेठ 10 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
5: झुङ्गा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 9 जेठ 11 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
6: रामपुर सहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 3 जेठ 12 गते समय बिहान 10 बजेदेखि
5: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर कैलाली
1: बाबु ए बाबु काल मनिष मेडिकल में जाइस्तो
7: महिनै जाइ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई को यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
7: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तुम्हें अब भी जाए
8: ज्ञात कर्मी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपारके तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइती रहल बा। सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नम्बर 9860071024 ओ 9806477।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान 9 बजे के खोज खबर में अपने स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उक्रा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप सम्रपात्र और नेपाली पात्र में फिर सुनती हलवा।

0: जानकी गाउँपालिकाको अत्यन्त जरूरी सूचना।
1: नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हकको धारा 39 अन्तर्गत बालबालिकाको व्यवस्था भएको र बालबालिका ऐन 2075, बाल श्रम ऐन 2056, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरे गराइएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वतः बदर हुने भएकोले आफू सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर, ग्यारेज, होटल, कारखाना, गिट्टी, बालुवा, घरेलु कामदार, गाडीमा सहचालक नलगाउन साथै धूम्रपान, मध्यपान, सुर्तीजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा बाल बालिकालाई संलग्न नगर्न हुन हार्दिक अनुरोध छ। यदि कसैबाट कानून विरूद्धका कार्यहरू भए वा गरे गराइएमा कानून बमोजिम कार्यवाही हुने बेहोरा सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई जानकारी गराइन्छ।
0: अध्यक्ष गणेश चौधरी, बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका जानकी कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकलमे जाइस तो?
3: मै नै जाइ, उहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नै निकर्छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिकामे लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा।
5: मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल, घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9846477417।
6: विश्राम पाछा फिर से स्वागत बा। आप खेल खबर। आईसीसी पुरूष क्रिकेट विश्वकप लीग टू अन्तर्गत के त्रिकोणात्मक श्रृंखला के अन्तिम खेलमा आज शुक्रबार नेपाल अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा कर्तीबाट किर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुइना खेल बिहान के 9:30 बजे शुरू हुइना बा। घरेलू मैदानमा हुइटी रहल श्रृंखला के अन्तिम खेलमा नेपाल जीत निकर्ती सुखद अन्त्य गर्न लक्ष्यमा बा। इन्स्याघ शनिबार हुलक पहिलो भेटमा नेपाल अमेरिका 9 विकेट के फ्राकिलो अन्तर पराजित गर्ल रही। उक्त खेलमा ओपनर कुशल भुटेल अवजित शतकीय इंग्लिश खेल रही। एक श्रृंखलामा नेपालकी मिश्रित नतिजा निकलबाट पहिलो खेलमा स्कटल्याण्डसँग 2 रनके चिनो अन्तर से पराजित हुलसेफे। नेपाल 5-2 खेलमा शानदार जीत दर्ता कला रहे। 3 खेलमध्ये 2मा जीत हात पर्लक। नेपाल आजकी खेल मार्फत घरेलू मैदानकै फाइदा उठेकी अंक तालिकामा सुधार गर्न चाहना। इहेर भ्रमणकारी टोली अमेरिका फे आखक खेलमा बेहोराकै हारकै बदला लिन योजना बा। बुधबार हुलक खेलमा स्कटल्याण्डकै ऊपर फ्राइकलो जीत निकलक। अमेरिकाकै मनोबल उच्च देखि बा। यद्यपि त्रिवीय मैदानमा अमेरिकाकै तथ्याङ्क कमजोर बा। यही मैदानमा नेपाल र अमेरिकाकै बीच हुलक 3 एक दिवसीय ओडीआई खेलमा घरेलू टोली नेपाल विजय हुल बा। लीग टू अन्तर्गतकै यी चक्र नेपाल खेलाको अन्तिम घरेलू खेल हो। यही श्रृंखलाकै पाछ नेपाल आगामी 2 त्रिकोणात्मक श्रृंखला विदेशी भूमिमा खेल्न तालिका रहल बा। ओस्ताक विदेशी भ्रमण स्याग घरेलू मैदानमा जीत निकर्न नेपाल खेला महत्वपूर्ण मानगिल बा। यह समाचार संघ खोज खबर बराल देना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से एक चो। अपाङ्गता हुलक व्यक्तिपनका लागि विपद पूर्व सूचना तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम तथ्याङ्क पूर्व सूचना हुलक उद्धारमा सहसुना। सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सरकार आयोजना बैंक कालीन मरन्ना। सुदूरपश्चिम लुम्बिनी तराईकी जिल्लामा तापक्रम बढ्दै देशकै कुछ ठाउँमा फेरि वर्षाकै सम्भावना। विश्वकप लीग टू आज नेपाल अमेरिका भेटी। आबकला खोज खबर तथा प्राविधिक मित्र छपिला चौधरी धन्यवाद देखी। आबकला खोज खबर से मैं टीका चौधरी विदाई टू एक 12 बजे की खोज खबर सुन सकी। सामुदायिक रेडियो टीका प्रयास सुनती रही।

0: रोका
1: के भयो किन कराएको यस्तो
0: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
2: एनसेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
1: हो र
0: हो नि एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
3: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 ह्यास डायल गरी वा एनसेल एपमा गई लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
4: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो
5: कुटपीट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरजस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नाई देना बोले नाई देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
4: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नाई बैठी ओसीएमसी स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी
5: अथवा पैसा नाई लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी ओ सीधा अदालत में थे जय से जय
4: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली युनाइटेड एकेडमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 मा वाणिज्य संकाय मा भर्ना खुल्यो
6: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ
4: पढाइ हुने विषयहरू
7: अनिवार्य नेपाली
4: अनिवार्य अंग्रेजी
7: सामाजिक गणित
4: ऐच्छिक लेखाशास्त्र
7: ऐच्छिक वित्तशास्त्र
4: ऐच्छिक अर्थशास्त्र
7: कम्प्युटर विज्ञान
4: भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू
7: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि
4: भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि
7: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि
4: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म
7: दक्ष अनुभवी तथा विषयगत विशेषज्ञ शिक्षकद्वारा सहजीकरण गराइनेछ
4: स्मार्ट क्लासरूम तथा डिजिटल लर्निङ सिस्टमको व्यवस्था
7: विद्यार्थी मैत्री शान्त तथा सुरक्षित शैक्षिक वातावरण
4: नियमित युनिट टेस्ट विकली टेस्ट तथा मोडेल इक्जाम सञ्चालन गरिनेछ
7: कमजोर विद्यार्थीका लागि विशेष सुधारात्मक कक्षाको व्यवस्था
4: उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई मासिक तथा वार्षिक पुरस्कारको व्यवस्था
7: समय अनुसार प्र्याक्टिकल प्रेजेन्टेसन तथा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा विशेष जोड
4: आधुनिक कम्प्युटर ल्याब तथा इन्टरनेट सुविधा सहितको अध्ययन व्यवस्था
7: अनुभवी करियर काउन्सिलरद्वारा भविष्य निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शन
4: नेतृत्व विकास व्यक्तित्व विकास तथा सार्वजनिक बोल्ने कला सम्बन्धी तालिम
7: अनुशासन नैतिक शिक्षा तथा सकारात्मक सोचको विकासमा विशेष प्राथमिकता
4: अतिरिक्त क्रियाकलापद्वारा विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन गराइने
7: विज्ञान प्रविधि तथा व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित शैक्षिक भ्रमणको व्यवस्था
4: सीसीटीभी निगरानी सहित सुरक्षित तथा व्यवस्थित विद्यालय वातावरण
7: अभिभावक र विद्यालय बीच नियमित समन्वय तथा प्रगति प्रतिवेदनको व्यवस्था
4: सीमित सिट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ
7: हाई डिग्री अफ डिसिप्लिन एन्ड एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट भएको
4: थप जानकारीका लागि 091-560-738 091-561-446 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77
7: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली

0: यो बा
1: का होइल बाबू अपने कलकलाइत रही अपने काकर कलकलाइत रही ले यो भुइया में के हो काकर भुइया में ढनवाना आइल बाटी
0: सुनि ना दादू हमरा दुनु जना बन में घास काटायल रही मर संग में सब पका दस नी ना दादू हाली का करना होई एही ना सत्य हो पता के न फुगा कोले से हुने रहा
1: ओहो ऐसिन बेला में एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के असिया लाग के बैठनी हुई यह लगे बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा फोन कई दादू अपने नी आते हैं ना संघर एक ध्यान दी हेलो मुकेश तू जत्ते ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाओ यहाँ एक जना बाबू है ना सपुआ काट के ना इमरजेंसी पर गिल तुरंत ही उपचार केंद्र में ले जाए पड़ल राजमार्ग चौराहे 100 मीटर पश्चिम बाऊ पांचर बाटी ना हमरा मुकेश जत्ते ही आओ हाँ सबकू काम छोड़ खा
2: बेटा संतोष मैं मोटरसाइकिल लेके आई गिनू जत्ते ही
1: सुनी बाबू सपो कटलक मने है ना जत्रा साइकिल जत्ते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केंद्र में ले जा डाले पड़ता ऐसी बेला में सबसे जत्ते हुई ना यातायात के साधन वाजे पड़ता यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकले से अपने वो सवारी चालक के बीच सपो कटलक मने है ना सुरक्षित हुई ना मेर से बैठा कर तुरंत उपचार केंद्र पुगाई पड़ता मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई मोर भरपर में संघरिया मैं तुरंत बेरे में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच से बैठा कर उपचार केंद्र पुगा डालू अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आए
0: लगा
3: दादू सांप दस्त से मोटरसाइकिल स्वयं से डिबलाई सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई
4: यदि समय में जो उपचार कर सकल से सांप डसलक मन बचाई सक दी था वो इन मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सक दी था सांप डसलक मन यहाँ छट्ट से छट्ट उपचार केंद्र में ले जा डारी यही ले ऊ मन एक जीवन बचाए भारी मदद कर था विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: जापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
7: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
8: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
9: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
7: डेलिभरीका लागि
9: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
7: टीकापुर कैलाली
10: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98017 10672
11: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दी भोज आइगेली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनी न पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कतरा सुघर बना कन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846239161
2: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़

राम राम। समुन्नत समाज के लग समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफ एम 101 मेगा हर्ज खोल के बैठल सखु रेडियो प्रेमी मैगर संघ में स्वागत के संगे अभिवादन करना चाह मई चांद मुरी बोल अपने के संगे पुगे इत्यादि संघरे सीपीजी ऑनलाइन में www.tikapureFM.org टीकापुर FM एप्स मार्फत व हमारे पात्र मार्फत के संसार के कोई भी कोनो से सखु जाने संगे कार्यक्रम गुजचाली हवई हरेक हफ्ता के शुक्रवार के दिन 10:15 बजे से करीब करीब 11 बजे सम्म हमारे सखु जाने संगे हुई थी व आज फिर संगे हुई आप गलाती कार्यक्रम गोष्ठी में अपन सहभागी जनाए चाहे ना भूले भी लाइन खुला कर सकला थी 91.5/61 डगर खुला कर सकला थी भावना रुचि सुने न कार्यक्रम गोष्ठी रेडियो मार्फत चिन्ह जान कर सकना रेडियो मार्फत संग्रह बने ओ बनाए सकना अक्के ठो कार्यक्रम गोष्ठी तब मारे अपन अपन रानी बानी बताए लगवाए सक थी लौ रहे लौनी चाहे कोई संग्रह के फिर लौन संग्रह के खोजी में बात ही करे से अपने होकर आई सक थी संग्रह जे तब मारे ये अपने मई कर अर्जी करना चाहम अपने हुकन के संग यो अबे के समय में क्या करते आती संग चटकार झटकार घाम के संग संगे नेंगती घूमती आती फुर्सत के समय में आती अपन अपन काम धंधा में लागल बाती की मजे ही भी कुशल मंगल आराम ही भी कना हमन ला ठो जी समय निकाल के इनसे फिर साथ देख चाहे ना भूले भी ये मई कर अर्जी करना चाहम अपने हुकन के संगे बने कार्यक्रम की शुरुआत करी हम एक ठो गीत से।

हजुर कार्यक्रममा फेर स्वागत गर्न चाहब अपने उक्रन अपने उक्र भर्खरै रेडियो खोलके बैठल बाटी गले सुन्दी भारती समुन्नत समाज के लग समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीका परिषद 101 MHz सुन्ती आदी कार्यक्रम गौशाली हवे हरेक हप्ता के शुक्रवार के दिन सवा 10 बजे से करीब करीब करीब 11 बजे सम्म हाम्रो सकुदाने सँगसँगै हुई थी वा सँगसँगै हुई आपुगलाती एकदमै चटकार झटकार काम गर्ने अब के समयमा नेङ्टी घुम्टी आटी फसट के समयमा आती अपन अपन काम धन्दामे लागल बाटी कि मजै हेबी कुशल मंगल आराम हिरिकन हमन लागत एकचोटि समय निकालके भेल छे साथ देख चाहि ना भुलैबी तिमै गर जानकारी कर्न चाहम अपने उपके संगे संघर्य के खोजी में रहल संघर्य प्रेमी संघर्य रेडियो मार्फत चिन्जान करना जो अपने मन पर इच्छा वा रुचि रहेकाले से अपने आइसक छी मै का जानकारी करना चाहम अपने के संगे लौरा लौंडी चाहे कोई संघर्य फे अपने के कैसी रानी बानी हुई संघर्य मन पर थी कैसी रानी बानी हुई संघर्यकन संघर्य बनैना जो अपने इच्छा भाई रुचि भाई तब मारे अपने आइसक छी मई का जानकारी करना चाहम अपने के संगे आजकल दिन प्रतिदिन एकदमै घाम एकदमै जोर जोर जोर से घाम बढ़ती बाबई घाम में घाम से बचक लग जो अपने बिल्कुल एकदमै ख्याल करे पड़ना बाबई घाम में सके सम नेंगबे फेनाई कर दी और नेंगे परिगिल कले से काम हुई कले से छाता या टोपी लगा के छाता लेके नेंगना बानी जो बैठे भी ढेर जूर ढेर सफा पानी पीना जो बानी बैठे भी इमें का जानकारी करना चाहब अपने हुकन के संगे ओ जाके पोसिलो झोरहा चीज जो खैना बानी बैठे भी पानी रहल जैसी चीज जो खैना अपने हुकन बानी बैठे भी इमें का जानकारी करना चाहब अपने फिर स्वस्थ रही अपन घर परिवार लड़का बच्चन अपन छर छिमेक है फिर स्वस्थ बनाए ये घाम से बचक लग जो अपने एकदम सलाह दी अपन जो बात बटवाई इमें का जानकारी करना चाहब अपने उनके संगे और संघर्ष के लाइन खुला बाबू शून्य 91.5 161.55 के अगर खुला बाबू गोछ्याली कार्यक्रम हरेक हफ्ता के शुक्रवार के दिन सवा 10 बजे से करीब करीब करीब 11 बजे सम्म ऐना करते हमने सकु जाने ऑनलाइन में www.tikaoperfm.org tikaoperfm एप्स मार्फत व हमारे पात्र मार्फत फिर संसार के कोई भी कोनवा से अपने होकर सुनती वाटी वनैती हुई या वह ठाव से फिर अपन सहभागीजनक फिर चाहे ना भले भी मैं जानकारी करना चाहूँ अपने के संगे हटे पर फिर से हम रखो गीत जोरी गीत के बाद से हमें फिर से यह बाटी लाइन खुला बा

0: हजुर कार्यक्रममा फेरि स्वागत गर्न चाह आफ्नो ग्रहण लाइन खुल्ला भाव 91.5 गर खुल्ला भाव है हिमै गर जानकारी गर्न चाह आफ्नो ग्रहणको सँगै लाइन खुल्ला भाव है भावना रुचि सुनैना कार्यक्रम गोशाली रेडियो मार्फत चिन्जान हुइसक्न कार्यक्रम गोशाली सङ्ग्रह बन्यो बनाइसक्न कार्यक्रम गोशाली यी आफ्नो ग्रहणको लग्न हो हरेक हप्ताको शुक्रबारको दिन 10:15 करीब 11 बजेसम्म हाम्रो सबको जाने सँगसँगै हुन्थे आफै सँगसँगै आदि लाइन खुल्ला भाव है अपने के फोन कर फोन में केन्द्रित होके बात बटवे नजर प्रयास कर भी पूरा बात बटवा के जा देवी मई का जानकारी करना चाहम अपने उपकरण के संगे और संग्रह बना के चाहे फैशन के रूप में संग्रह करना है संग्रह बनैना छोड़ना चाहे ना कर देवी मई का जानकारी करना चाहम कोई संग्रह लाइन में आ रही कहाँ से कौन संग्रह हजर राम राम हजर राम राम
1: राम राम
0: एक चोटी जोर से बोल रही हजर कहाँ से केकर बोल सुन ली
1: हजुर राम राम दादा
0: कहाँ से के कर बोल सुन ली हमरा
1: बर्दिया राजापुर से सुशांत चौधरी
0: बर्दिया राजापुर से सुशांत चौधरी खबर कैसी बस सुशांत जी के ना
1: मजे बाटी
0: खेती बाती के तैयारी हुई लागल
1: बिहार
0: बोइना शुरू हुई थी बाबू
1: हजुर दादा
0: कौजो करके दिन बिती भाई था आजकल हमारा
1: आजकल आज तो हो घर काम हम कोई का कर तो पड़ा दादा
0: घाम ज्यादा भाव नहीं
1: हजुर
0: लड्डी तरीक मने तो सीतर सीतर सीतर लागे पड़ना हो इटा
1: लड्डी ठेका मने तो हो दादा घाम ही हो लग बहुत
0: घाम ही हो नहीं
1: हजुर
0: घाम के सीजन घाम के माहौल
1: नहीं सीजन बहुत घाम बहुत घाम
0: खुशी लागल शुरू कर सकती
1: शुरू कर से अपन से छोट मैल माया करना अपन से भारी मन आदर सम्मान करना अपन मद्यपान से दूर रहना ज्यादा भेदभाव नहीं करना लगभग फुटबॉल वॉलीबॉल खेलना संगर या बनना का पल दादा
0: अपने के भावना और रुचि कोनो संघर या उकरन मन पराठी अपने है संघर बनाईना कोनो संघर का निक्षा हुई रुचि हुई कले से एकदम ही सहज से कैसी के भेटाई से जे अपने है संघर के रूप में
1: कौन टेक नंबर दादा
0: सॉरी सेक्टी
1: 9814-5150 9814-5150 राजापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 सुशांत चौधरी
0: 9814-5150
1: हजुर दादा
0: यी नंबर में वस्तु के राजापुर नगरपालिका 3 सुशांत चौधरी छ ठेकान में अपने पाई सक गई
1: हजुर दादा
0: समझे सकती संगर
1: अब
0: एक लग विदा है
1: राम राम
0: राम राम सुशांत जी रहे राजापुर 3 के संग रहे ढेर धन्यवाद देना चाहब सहभागी के लग वहाँ है नियमित संग रहे फोन करती रहते हैं ढेर धन्यवाद देना चाहब यदि वहाँ के भावना और रुचि अपने मन पर थी वहाँ से संग्रह बनना जो अपने मन हुई इच्छा हुई कले से राजापुर नगर पालिका 3 सुशांत चौधरी 9814-5150 ई नंबर में फिर एकदम सहज से वहां पाई सकती भेटाई सकती संग्रह के रूप में एकदम अपने अर्जी करना चाहम लाइन खुला भाई 91.5 केदागर खुला भाई अब के पाला में अपने उनके फोन से बिल्कुल सफल हुई सकी आई मई का जानकारी करना चाहम अथे पर हमें फिर से एक गीत जोड़ी गीत के बाद फिर से यह बात

हजुर, कार्यक्रममा फेरि स्वागत गर्न चाहब आफ्नो उपकरण आफ्नो भर्खरै रेडियो कलको बैठल बाटी कलेश सुन्दीवादी समुन्नत समाजको लग समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकाबर एफएम 101.9 मेगाहर्ज सुन्तियाटी अनलाइन www.tikabareffm.org टिकाबर एफएम एप्स मार्फत र हाम्रो पात्र मार्फत संसारकै कोही भी कोनो से सबको ठाउँ हाम्रो सबको जाने एकदमै लग्ञ सज्ञाति भएका जानकारी गर्न चाहन् गोशाली कार्यक्रम हरेक हप्ताको शुक्रबारको दिन सवा 10 बजे से करिब करिब करिब 11 बजेसम्म हाम्रो हुन गर्थे वाच सबको जाने सज्ञाति लाइन खुल्ला बाबै साथ डेटियाटै सिपीजी मै चाँद के पार सुने 91.5 165 के दगर खुल्ला बाबै भावना रुचि सुने न कार्यक्रम गोशाली रेडियो मार्फत चिन्जान हुई सेक्न कार्यक्रम गोचाली ई कार्यक्रम अपने हुक्रहन के लग्न है जानकारी करना चाहम अपने हुक्रहन के संगे फोन कर भी करे फोन में कैंडिडेट होकर बार बटुने प्रयास कर भी पूरा बार बटुआ के जादे भी मजा नेटवर्क को हिल ठाउं से साथ दे भी मई का जानकारी करना चाहम अपने हुक्रहन के संगे और संग्रह एकदम एकदम चटकार चटकार चटकार झटकार घाम आजकल बाबई आजकल चाहे हावा फूरी बयाल बहन दिन आगी के प्रयोग अपने हुके एकदम चलाक होके कर भी आगी के प्रयोग अपने हुके जस्ते खाना पकाया के सेगी कल से मजा के बुटैना जो बानी बैठेगी लड़का प्रकंड आगी से दूर यानी कि आगी लगैना आगी लगना चीज से दूर धरबी लड़का पर्का पुग्न नाइट हमें सलाई लाइटर जैसी चीज चाहिँ लड़का प्रकंड के पहुँच से एकदम दूर धरबी कना अपने मई का जानकारी करना चाहम अजा के बनुआ तरिक संग्रह के चाहिए अपने के बनुआ कोई संग्रह के तो लमसम लमसम सिगरेट पीना आगी लगेना जैसी निकी आगी के प्रयोग करके मजा के नाई बुटेना करते वहां के चाहिए अपने के एकदम ही ख्याल पुगे भी सजग रही जीव बनुआ में रहल जीव जंतु लावा लौटल टेलुआ चाहे जर के सखाब हुई सेगा टब मारे चाहे अपने होते आगे के प्रयोग एकदम सके समय तो कर बने कर भी एक दी कर एक परिगिल कर ले से एकदम सजग होके कर भी इमाई का जानकारी करना चाहे अपने होते उनके संगे लाइन खुला भाव 91.5 161 265 के अगर खुला भाव अठे पर हमने फिर से एक गीत जोड़ी गीत के पास हमने फिर से हुई बात।

हजुर, कार्यक्रम में फिर से स्वागत करना चाहब अपने हो। निर्धारित समय से बिल्कुल डगर कट्टी कट्टी कट्टी लागल अवस्था में हम व्यापल अथी हत्र पटेल सम रेडियो के साथ डेली रेडियो प्रीमियम एकर संगठन के ढेर धन्यवाद सहभागी जनय संगठन ढेर धन्यवाद कोनो संगठन के सहभागी जनय प्रयास करल हेगी अपने फिर ढेर धन्यवाद देना चाहब। आजकल एकदम घाम के सीजन बाओ अपने होके चाहिए घाम से बचक लग चाहिए ढेर ढेर ढेर चाहिए अपने होके सफा जू पानी पीना बानी बैठेगी अहिमा के जानकारी करना चाहब अपने के संगे सफा चीज बासी और चीज चाहे खाना जो अपने के नहीं कर दी मैं जानकारी करना चाहब। मोरी बोल अत पटेल सम रेडियो अपने के रेडियो सेट समय पुगा दिले को संग्रह सीधी जो है ढेर धन्यवाद है कि एक सौ गीत छोटी में कार्यक्रम संचालक चांद के पारे खपत के लग भी रहे तो अपने के पल शुभ रहे। राम राम।

0: कबू कापी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिपटो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
0: ला फिर यो गाड़ी ले धोखा दिने भयो
4: जहिले पनि बैटरी कै समस्या बैटरी कै समस्या
0: यो टीकापुर मा पनि बैटरी कहाँ पाइएला टेन्सन मा भए म त अब
5: भाइलाई थाहै रहिनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टर मा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
0: ए यो टीकापुर मा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
5: कहाँ हुनु भाइ टीकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
6: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल दिदीलाई धन्यवाद अब त त्यही जान्छु
7: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्ड को मोटरसाइकल ट्रैक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबी मा लाग्ने सम्पूर्ण साजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
5: सम्पर्क नम्बर 0915604070 र मोबाइल नम्बर 9848558।
1: दाजु हेर्नुहोस् न भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराखेको छ तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु
8: के गरौँ त म यत्रो उपचार गरिसके कति ठाउँमा लगिसके तर निकै हुन्न
1: दाई बरु एकपटक टीकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि
8: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक
9: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू ओपिडी सेवा भिडियो एक्सरे सेवा एक्सरे सेवा ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा इसिजी सेवा मेडिकल सेवा इएनटी सेवा प्लास्टर सेवा बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म डाक्टर हेमन्त स्वार टीकापुर ब्लक नम्बर 7 गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड टीकापुर फोन नम्बर 0915600095 मोबाइल नम्बर 9894827359।
0: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो
10: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ
0: पढाइ हुने विषयहरू अनिवार्य नेपाली अनिवार्य अंग्रेजी सामाजिक गणित ऐच्छिक लेखाशास्त्र ऐच्छिक वित्तशास्त्र ऐच्छिक अर्थशास्त्र कम्प्युटर विज्ञान भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू
10: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि
0: भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि
10: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि
0: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म
10: दक्ष अनुभवी तथा विषयगत विशेषज्ञ शिक्षकद्वारा सहजीकरण गराइनेछ
0: स्मार्ट क्लासरूम तथा डिजिटल लर्निङ सिस्टमको व्यवस्था
10: विद्यार्थी मैत्री शान्त तथा सुरक्षित शैक्षिक वातावरण
0: नियमित युनिट टेस्ट विकली टेस्ट तथा मोडेल इक्जाम संचालन गरिनेछ।
10: कमजोर विद्यार्थीका लागि विशेष सुधारात्मक कक्षाको व्यवस्था,
0: उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई मासिक तथा वार्षिक पुरस्कारको व्यवस्था,
10: समय अनुसार प्र्याक्टिकल प्रेजेन्टेसन तथा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा विशेष जोड,
0: आधुनिक कम्प्युटर ल्याब तथा इन्टरनेट सुविधा सहितको अध्ययन व्यवस्था,
10: अनुभवी करियर काउन्सिलरद्वारा भविष्य निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शन,
0: नेतृत्व विकास, व्यक्तित्व विकास तथा सार्वजनिक बोल्ने कला सम्बन्धी तालिम,
10: अनुशासन, नैतिक शिक्षा तथा सकारात्मक सोचको विकासमा विशेष प्राथमिकता,
0: अतिरिक्त क्रियाकलापद्वारा विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन गराइने,
10: विज्ञान प्रविधि तथा व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित शैक्षिक भ्रमणको व्यवस्था,
0: सीसीटीभी निगरानी सहित सुरक्षित तथा व्यवस्थित विद्यालय वातावरण,
10: अभिभावक र विद्यालय बीच नियमित समन्वय तथा प्रगति प्रतिवेदनको व्यवस्था,
0: सीमित सिट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ,
10: हाई डिग्री अफ डिसिप्लिन एण्ड एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट भएको।
0: थप जानकारीका लागि 091-560-738, 091-561-446, 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77
10: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली।

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज था का कना हो बाबा फिर उस तबाटिन गतिलो ठाउं से झोला अंदर से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर रही थी रहत
0: का हुई कभू लड़का कभी हेरा कही था कभू पेंसिल हेरा कही था कभू झोले फटा कही था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक था
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ हो टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरास बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज

0: सीतापुर नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको अनुरोध। नेपालको संविधान 2072 तथा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम सम्पूर्ण बालबालिकाहरूको शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने आदर्श वाक्यका साथ सम्पन्न हुन गइरहेको शैक्षिक सत्र 2083 विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पूर्ण अभिभावक तथा सरोकारवाला ज्यूहरूले विद्यालय उमेरका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी अभियानलाई सफल पार्न सहयोग गरिदिन हुन सादर अनुरोध छ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा टिकापुर कैलाली।
1: उहट हेर बुढिया बर्खाक समय खेबा पखारिक मुहका रुकल बाकी मुसुआ आयल कलस आब मुसुआ खुस्ती सब अफे आई सकता
2: ओहो हो निका सबको समझनु घरक आंजर पाजर झोसास से बाहर से कत्ता का तहिल बा काटा पर ना रह
1: हाँ असी करी हेर बुढिया ओ सिन्हो कलस से काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पकाकर बासी खाई दूसरा सर परियार मन मिलकर सर सफाई कर दी दूसरा आंजर पांजर रहल फोहर का व्यवस्थापन कर दी तो नहीं हुई
2: हुई था हो बुढ़वा असी डाला मटर ध्यान घास फोहर झपास भी था उमा ताप नुक्का बैठल रह सकता ना
1: वह और सेटर कलक हो छाई समीरा छावा विवेक दुओ मई मिलकर भरत आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे थे घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुहकर थे सांप मुस्कुसू के पैठनी सेकना में चबर डार पड़ल दूसरा घरक आंजर पांजर फसफारो सफा हुई से सांप पहना का उस्तहा कम हो जाए
2: काल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुसर थे बा
3: साग बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठ मन पड़े था मौसम में आपन बसारा में पानी पैसना फिला कोर से सुखा ठाव का खोजी माहरा बाहर निष्कट
4: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम फिर सांप मानव बस्ती लघ आई सक
5: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केंद्र कहाँ बा कई पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिख सकती था।
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: कब्बू का तीर रहता कब्बू पेंसिल रहता कब्बू झोले फटा का आज इठा का कना हो बाबा के होस्ट बाटिन गटिलो ठाउं से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं है।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर इटी रहत
0: का हुई कब्बू लड़का कभी हेरा कई था कब्बू पेंसिल हेरा कई था कब्बू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला अनल बाटी ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कब्बू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का अनल झोला दस का टस बाटी ये बुरहक ढंग कब्बू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गया झोला उद्योग में रट गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: घर त जेन तेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
4: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
3: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
4: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि।
3: अब त म ढुक्क
5: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
4: मोबाइल नम्बर 98481-43326 जमरापारी टिकापुर कैलाली।

0: रोका
1: के भयो किन कराएको यस्तो
0: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
2: एनसेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
0: हो र हो नि एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
3: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 ह्यास डायल गरी वा एनसेल एप मगाइ लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
4: नवजीवन सहकारी संस्था के 32 वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड के 32 वार्षिक साधारण सभा तथा ऊ सभा से कई जिना संस्था के नया कार्य समिति के निर्वाचन समेत निम्न मिति समय ओ स्थान में हुईना हुईले कोर से संस्था के संपूर्ण शेष सदस्य महानुभाव होकर संस्था के शेष सदस्य परिचय पत्र वा नेपाल सरकार से प्रमाणित करल जारी कई हिल फोटो सहित के परिचय खुलना कागजात के साथ उपस्थित हुईकला हार्दिक अनुरोध करती मिति 2083 जेठ 9 गते शनिवार समय बिहान के 8 बजे से संजय 5 बजे सम स्थान ओम पैलेस धनगढ़ी कैलाली नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढ़ी कैलाली विस्तृत जानकारी के लक संपर्क नंबर 091-520-283

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800046 77417
4: घरेको भए हैन गरिहाल्नुस् यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
5: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बीमा कभरेज न कुनै फाइनान्सियल तनाव न त क्याशकै झन्झट सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट
4: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
5: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
4: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ
5: ई सेवा सबै सधैँ सँगै

0: यता त डरै रिसाएछन् बोलेनन् खै
1: खै यति करलान्डन नगाउने के हो गठे
2: मुहार रियाली छ क्या
3: हे के भनम खै हे

0: सीतापुर नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको अनुरोध। नेपालको संविधान 2072 तथा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम सम्पूर्ण बालबालिकाहरूको शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने आदर्श वाक्यका साथ सम्पन्न हुन गइरहेको शैक्षिक सत्र 2083 विद्यार्थी भर्ना अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पूर्ण अभिभावक तथा सरकारवाला ज्यूहरूले विद्यालय उमेरका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी अभियानलाई सफल पार्न सहयोग गरिदिन हुन सादर अनुरोध छ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा टिकापुर कैलाली।
1: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भोज आगिलि न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
2: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोज्ती खोज्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटास तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुघर बना कन ल बाटी
2: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाई कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टिकापुर प्रोप्राइटर फेहरी सिंह सुनार।
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए। मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261।

0: यादे मुस्कट औरत आज हेरोटे बुरवा
1: ओहट हेर बुढ़िया बरखक समय थेबा पखारिक मुहका रुकल बाकी मुसवा आयल कला से आबो।

0: चाप बर्खा छाकक समयमा सुक्खा ठाउँमा बैठ मन परैठ। यी मौसममा आफन बस्यारामा पानी पैसा पिला कोर्से सुक्खा ठाउँका खोजीमा उपरा बाहिर निस्कठ।
1: मुस मुर्गी जसिन आहाराको खोजी गर्ना क्रम फेर साँप मानव बस्ती लग्घ आइसक्छ।
2: विश्वास लग्नाओ सही जानकारी पाइक लाग ओ लग्घ उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाग। आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिह सक्दैछ।
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा

0: विद्युत महाशुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना 2083 असार 1 गते से टीकापुर वितरण केन्द्र हो लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत के संचालित विद्युत महाशुल्क काउन्टर बन्द गर्न लक्ष्य रलकोर्से विद्युत महाशुल्क अनलाइन माध्यम से भुक्तानी गर्न सक्कु ग्राहक महानुभाव फुक्रान यह सूचना से जानकारी कराएती। विद्युत महाशुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न समय बिहान के 8 बजे से रात के 12 बजे सम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर कैलाली।
1: शरीरमा लाल वा फुस्तर छुअबेर ठहानी बिना स्पर्श शक्ति हेरेलको निखुञ्जिना डाग देख पर्लसी हात गुरा झमझम गर्न तथा मास सुहाक बठिना हुलसे कुष्ठरोग हुइसेक था।
2: कुष्ठरोग महिला व पुरुष जेही फे लागसेक था। कुष्ठरोगको शंका लगेकी लगभग स्वास्थ्य संस्था वा साइनिङ अस्पताल INF नेपाल बाँके जानकी तीन मानपुरमा सम्पर्क गरी
1: महिला उक्र अस्पताल सम्म आइक्लाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइक्लाक आफ्ना घर पुरुष उक्र मद्दत गरी।
2: कुष्ठरोग मुक्त समाज निर्माणका लागि साइनिङ अस्पताल INF नेपाल बाँकेसे जनहितमा जारी सन्देश।

0: टीकापुर बहुप्राविधिक शिक्षालयमा भर्ना खुल्यो।
1: सिटी भिटीको आंकिक नमूना शिक्षालय टीकापुर बहुप्राविधिक शिक्षालयमा शैक्षिक सत्र 2083-84 भर्नाका लागि आवेदन खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
0: शैक्षिक कार्यक्रमहरू
1: डिप्लोमा कृषि इन्जिनियरिङ सिट संख्या 48 जना, सम्पर्क नम्बर 9844-92-88-83।
0: डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ सिट संख्या 48 जना, सम्पर्क नम्बर 9858-47-88-90।
1: डिप्लोमा पशु विज्ञान सिट संख्या 40 जना, सम्पर्क नम्बर 9855-06-40-31।
0: डिप्लोमा बाली विज्ञान सिट संख्या 40 जना, सम्पर्क नम्बर 9851-27-39-98।
1: डिप्लोमा वन विज्ञान फरेस्टी सिट संख्या 40 जना, सम्पर्क नम्बर 9848-20-60-41।
0: प्रशिक्षण शुल्क हरेक विषयमा 3 वर्षको जम्मा 54,000 मात्र लाग्नेछ।
1: फारम भर्ने अन्तिम मिति 2083-13 गते सम्म।
0: अनलाइन आवेदन दिन चाहने आवेदकले itms.ctvt.org.np मार्फत पनि गर्न सकिनेछ। टीकापुर बहुप्राविधिक शिक्षालय।
2: नवजीवन सहकारी संस्था के 32 वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना। नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड के 32 वार्षिक साधारण सभा तथा ऊ सभा से कई जिना संस्था के नया कार्य समिति के निर्वाचन समेत निम्न मिति समय ओ स्थान में हुईना हुईले को से संस्था के संपूर्ण शेष सदस्य महानुभाव होकर संस्था के शेष सदस्य परिचय पत्र व नेपाल सरकार से प्रमाणित करल जारी कई गिल फोटो सहित के परिचय खुलना कागजात के साथ उपस्थित हुईला हार्दिक अनुरोध करती। मिति 2083 जेठ 9 गते शनिवार, समय बिहान के 8 बजे से संध्या 5 बजे सम, स्थान ओम पैलेस धनगढ़ी कैलाली, नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढ़ी कैलाली। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क नंबर 091-520-283।

0: जिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल
2: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो मिलबो नि करत का कहना हो का
1: मिस्तरान बर्जन उकना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा क टुफे ओस्त बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
3: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।
1: बुढल्ला सुन्टो कि नै वा नन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उने ना पट्टा नि पैना त
4: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे के कतरा सुघर बना कन ल बाटी
4: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आऊ जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846139161।
5: चलचित्र परदेशी को गीत सुन्छस्
6: सुनौ न त
5: ल त पनि गाए त

0: ए रुक रुक रुक
1: के भयो किन कराएको यस्तो
0: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
2: इन्सिलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
1: हो र
0: हो नि इन्सिलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
3: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 ह्यास डायल गरी वा एनसेल एप मगाई लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
4: विद्युत महाशुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना 2083 असार 1 गते से टीकापुर वितरण केन्द्र हो लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत के संचालित विद्युत महाशुल्क काउन्टर बन्द गर्न लक्ष्य र लकोर्से विद्युत महाशुल्क अनलाइन माध्यम से भुक्तानी गर्न सक्कु ग्राहक महानुभाव फुक्रन यह सूचना से जानकारी कराई थी। विद्युत महाशुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न समय बिहान के 8 बजे से रात के 12 बजे सम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर कैलाली।
5: टीकापुर नगरपालिकाको स्थानीय बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी जरुरी सूचना।
6: नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा यही मिति 2083 साल वैशाख 28 गतेदेखि जेठ 3 गतेसम्म मूल्य पारदर्शिता सप्ताह मनाइरहेको बेहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ।
5: टीकापुर नगरपालिकाबाट गरिएको नियमित बजार अनुगमनको क्रममा यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका व्यापार व्यवसाय पसल होटल रेस्टुरेन्ट औषधि पसल किराना लगायतका व्यवसायहरूमा बिक्री गरिने वस्तु तथा सेवाको मूल्य सूची राखेको नपाइएको हुँदा प्रत्येक व्यवसायीले बिक्री गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको स्पष्ट र अध्यावधिक मूल्य सूची सबैले देख्ने स्थानमा अनिवार्य रूपमा राख्नु हुन सूचित गरिन्छ।
6: प्रत्येक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा नवीकरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
7: बिक्री गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको स्पष्ट मूल्य सूची उपभोक्ताले सजिलै देख्ने स्थानमा राख्नुपर्नेछ।
6: उपभोक्तालाई खरिद गरेको वस्तुको बिल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
7: म्याद नागेका गुणस्तरहीन तथा अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन।
5: बिक्री गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको स्पष्ट मूल्य सूची उपभोक्ताले सजिलै देख्ने स्थानमा राख्नुपर्नेछ।
6: खाद्य तथा उपभोग्य सामग्री बिक्री गर्ने व्यवसायीले सरसफाई तथा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ।
5: कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कालोबजारी गर्ने तथा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने कार्य गर्न पाइने छैन।
6: व्यवसायिक स्थल वरपर सफा व्यवस्थित तथा सुरक्षित वातावरण कायम राख्नुपर्नेछ।
5: बजार अनुगमनको क्रममा आवश्यक कागजात दर्ता प्रमाणपत्र खरिद बिल लगायतका विवरण अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
6: नगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएका निर्देशिका मापदण्ड तथा नियमहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ।
5: प्रस्तुत मापदण्डको अनिवार्य रूपमा पालना नगरेमा प्रचलित नियमानुसार भइजाने बिहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ। टीकापुर नगरपालिका कार्यालय।
8: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
9: कोट पेट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरजस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैसे नहीं देना बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
8: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। ओसीएमसी स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी।
9: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
8: हिंसा अपने फेनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली

0: मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच कर आने भाई छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामी विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या, ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिप्पर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी टिकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-48-57-18-28।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
4: मै नै जाइ, उहाँ आफन अनुहार बिगर्के घर से बाहर नै निकर्छु।
0: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिकामा लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तवई तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तू मैं अब भी जाइम।
5: याद करबी, मनिष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनिष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
6: संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।

0: महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुरमा
1: जेठ 9 गते शनिबारका दिन
0: शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा पूर्व कार्यरत गोल्ड मेडलिस्ट वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अजय भट्ट बिरामी जाँच गर्न आउँदै हुनुहुन्छ।
2: परामर्श तथा उपचार हुने समस्याहरू
0: ब्लड प्रेसर गडबड भइराख्ने
2: आत्तिने तथा डर लाग्ने
0: मुटुको चालमा गडबडी
2: हात खुट्टामा झमझम हुने
0: मुटुको अपरेशनको फलो अप
2: मुटु रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार
0: छाती दुख्ने समस्या
2: श्वास फेर्न गाह्रो भएको समस्या
0: र सुगर थाइराइड दम निमोनिया सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार
2: डाक्टर आउने मिति हरेक महिनाको पहिलो शनिबार
1: जेठ 9 गते शनिबारका दिन
2: समय बिहान 10 बजे।
0: विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुर गाउँपालिका 2 जोशीपुर बजार कैलाली सम्पर्क नम्बर 9821613406 र 9848397585 9848367585।
3: आइ हो बड्डो घर कहिया सिज्जैब पाछसे सुरु करल मने घर सिज्जा सेकल
4: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परे सान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहीं ना हो का
3: मिस्तरान बर्जन हो कनक घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्टा बनी हो ना ओट्टा फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहूँ रख घूम जाए ता था पाए।
5: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
4: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: बुका पिएरै ठक बु पेन्सिलेरै ठक बु झोलै फटाका आजि ठक का कना हो बाबा फ्यु ओस्ट पाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहरै
1: ओहो इ बुढा लिखबे का हुई चीज जलम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठक कबु पेन्सिल हेरा कै ठक कबु झोलै फटाका ठक बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो त कहाँ टीकापुर म रलक रटगैया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दिदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिएरै ना कबु पेन्सिल रहिथिन ना झोला फाटल हुइथिन कहियक आनल झोला दस काटस बाटिन यी बुढक ढंग कबु पसल छानकन झोला नि आन स्याक ठुइन
1: ल्या ल्या मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: 11 प्रकारका विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पतालमा। उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू,
1: हाड जोड्ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषीकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा, जोर्नीको दूरबीनबाट शल्यक्रिया,
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, ल्याप्रोस्कोपी दूरबीनको माध्यमबाट पाठीघरको शल्यक्रिया सेवा,
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, जनरल सर्जनद्वारा विभिन्न किसिमका शल्यक्रिया सेवा, ल्याप्रोस्कोपी दूरबीनको माध्यमबाट पेटको शल्यक्रिया सेवा,
0: जनरल फिजिसियन विशेषज्ञ सेवा,
1: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा,
0: रोग सेवा,
1: मृगौलाका बिरामीका लागि डायलिसिस सेवा,
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा,
2: हरेक महिनाको दोस्रो, तेस्रो र चौथो शनिबार,
0: र सिटी स्क्यान सेवा,
1: गम्भीर बिरामीका लागि भेन्टिलेटर सहितको आईसीयू, एसडीयू, सीईओएनसी र बालबालिकाका लागि एसएनसीयू सेवा,
0: रोग पहिचानका लागि प्रयोगशाला सेवा, बायोकेमिस्ट्री, इम्युनोलोजी, हिस्टोप्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, पारासिटोलोजी, सेरोलोजी, इन्डोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, डिजिटल भिडियो एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, डिजिटल एक्सरे सेवा, ईसीजी, फिजियोथेरापी सेवा, अस्पतालका अन्य सेवाहरू, स्वास्थ्य बीमा सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा,
1: फार्मासिस्टद्वारा फार्मेसी सेवा चौबिसै घण्टा,
0: चौबिसै घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, सब वाहन सेवा,
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा, मेडिको लिगल सेवा,
0: सब परीक्षण सेवा, सर्पदंशको उपचार,
1: 12 रक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा इकाई,
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा, एआरटी सेवा, टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा,
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488, सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट, फोन नम्बर 97-62-48-35-8, उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरीको फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पतालको क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।
3: बर्खाक समय थेबा पखारिक मुहका रुकल बाकी मुसवा आयल कला से आब मुसवा खुस्ती सपवा फे आई सकता
4: ओहो मोनिका सबको समझनो घरक आंदर पादर जफास से बाहर से कत्था का पहिल बा काटा पर ना रह
3: हाँ असी करी हर बुढ़िया वो सिन्हो कला से काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पका का बासी खाई दूसरा सर परिवार मने मिलकर सर सफाई कर भी दूसरा आंजर पांजर रहल फोहर का व्यवस्थापन कर भी तो नहीं हुई
4: मीठा हो बुढ़वा असिन जाला मतलब यहाँ घास फोहर झफास भी था उमा साफ नुक्का बैठल रह सकता ना
3: वह और से तक अलग हो छाई समीरा छावा विवेक तू वो मई मिलकर भरत आंजर पांजर रहल झंग झंग घास काटी कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुहकर से सांप मुस्कुचू के पैठनी सेकना में चबरदार पड़ल दूसरा घरक आंजर पांजर फसफारो सफा हुई से सांप अना तो उसका कम हो जाए
4: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुर्सत थे बा
5: सांप बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठा मन पड़े था इ मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना फिलक ओर से सुखा ठाम का खोजी में होकर बाहर निष्कट
6: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लग्घ आई सकता
7: विश्वास लगना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लग्घ उपचार केंद्र कहाँ बा कई था पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिख सकती था नेपाल सरकार